नमस्कार, ये आकाशवाणी एडिलेड है 103.1 FM 5 EBI के भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम पेश कर रही हूँ मैं विनिया राय। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं ना रेडियो पे। सब कुशल मंगल? आप सबको नवरात्रि पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं आपका मुलाकात एक ऐसे शख्स से करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन के बारे में, इस देश तक पहुँचने यानी कि माइग्रेशन के बारे में और यहाँ के जीवन के बारे में एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखा है। यह पुस्तक और उनके अनुभव काफी अनोखे हैं, पर फिर भी हम आपके अनुभवों से मिलता जुलता भी। लेकिन उनसे मिलने से पहले एक और बात है, मैं एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगी। प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर अब नहीं रहे। 8 अक्टूबर को गोवा में स्थित उनके निवास में हृदयाघात से यानी कि हार्ट अटैक के वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हिंदी और मराठी सिनेमा के बहुत ही शानदार एक्टर थे और छोटे से छोटे रोल में भी अपना प्रभाव छोड़ जाते थे। इस दिग्गज कलाकार की याद में आज के कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं के फिल्मों से लिए गए हैं। तो ये पहला गीत सुनते हैं। ये एक भक्ति गीत है जिसे मैंने लिया है फिल्म क्रांतिवीर से। नवरात्रि भी है तो चलिए दुर्गा माँ के एक गीत से ये कार्यक्रम शुरू करते हैं।

0: तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रेम द्विवेदी। डॉक्टर प्रेम द्विवेदी एडलेड में रहते हैं और हम उनको जानते हैं काफ़ी सालों से। रेडियो में भी वो रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं और शायद भाग भी लिया होगा पहले, पर आज वेरी रिसेंटली आजकल वो लेखक बने हैं और अंग्रेजी में लिखा है एक पूरा बुक जो अमेज़ॉन में आप खरीद सकते हैं, पर उसके बारे में ना उतना जानकारी नहीं। हम बुक के बारे में और डॉक्टर प्रेम द्विवेदी के बारे में जानना चाहेंगे, है ना? तो बुक का नाम है द अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट, फ्रॉम अ विलेज बॉय टू अ साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नाम ही कितना रोचक है, बहुत ही ऐसा क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि इसमें क्या होगा। व्हाई इज इट कॉल्ड अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट? तो व्हाई इज इट कॉल्ड अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट, इसी से शुरू करते हैं डॉक्टर द्विवेदी के साथ। सबसे पहले मैं प्रेम जी आपको स्वागत करना चाहूंगी प्रोग्राम में। आपका स्वागत है स्टूडियो 5EBI हमारे मल्टीकल्चरल स्टूडियो स्टेशन में और हमारा भारतीय कार्यक्रम में।
1: थैंक यू विनय जी। पहले तो मैं आपको और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम में बोलने का चांस दिया। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है व्हाई माय बुक इज़ अनलाइकली, व्हाई द टाइटल इज़ अनलाइकली, रियली इस नॉर्मली आई आंसर दिस वन दिस वे कि आप लोग पढ़ो और आइडेंटिफाई करो व्हाई इट इज़ अनलाइकली। बट मैं आपको 1970s में थोड़ा सा लेके चलता हूँ, छोटी सी स्टोरी ही बताता हूँ आपको इस मामले में कि मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के में एक छोटे से गांव में हुआ था जो लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर्स दूर है। और वो गांव बहुत छोटा सा था जिसमें स्कूल वगैरह भी नहीं थे, एंड लेकिन मेरे फादर को था कि उनका शिक्षा में बहुत विश्वास था। एजुकेशन, वो कहते थे कि एजुकेशन अगर है आपके पास तो कुछ भी कर सकते हो। तो उस समय उस छोटे विलेज में आप इमेजिन करो जहां हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं जाने की सोचते थे, लखनऊ जाने की नहीं सोचते थे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तो कोई बात ही नहीं करता था। एंड दैट इज द रियल रीजन आई रोट व्हाई दी माई बुक इज अनलाइकली।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि उतने छोटे से गाँव से आप इतने दूर सात समंदर पार जैसे कहते हैं आप आए हैं, तो थोड़ा आपका वो विलेज के, आपके वो गांव के बारे में बताइए। आपके पहले स्कूलिंग कैसी थी?
1: तो विलेज जो है एक, जैसे हमने कहा, छोटा सा विलेज था जिसमें स्कूल नहीं था, लेकिन फादर को एजुकेशन में बहुत विश्वास था, तो उन्होंने हमको एक दूसरे स्कूल में जो पड़ोस के गांव में था वहां पे हम जाते थे। करीब 2 किलोमीटर गांव दूसरा स्कूल था, रोज पैदल जाते थे, आते जाते 4 किलोमीटर हो जाता
0: अच्छा।
1: था। एंड वहां पर भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, वहां पे एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे थोड़े सीनियर्स के क्लासेस लगते थे, अदरवाइज बाग था पड़ोस में आम का, उसमें क्लास लगते थे। तो मैंने यही कहता हूँ कि बरगद के पेड़ के नीचे मैंने करीब 5 साल तक, ईयर 5 तक वहाँ हमने पढ़ाई की। लेकिन हमें उससे कभी कंप्लेंट नहीं थी। मैं आज भी सोचता हूँ कि ओपन स्कूल था और मज़ा आता था पढ़ने में, जो बॉन्डिंग है वहाँ से बच्चों हमारे कुलीग से, मतलब स्टूडेंट से, वो आज तक हमारी बॉन्डिंग बनी हुई है ना। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर ईयर 5 पास करने के बाद फिर ये वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल कहलाता है, वो दूसरी जगह था, वो भी अप्रॉक्सीमेट वो 2.5 किलोमीटर था, वहाँ भी पैदल ही जाते थे और पैदल लौटते थे। तो वहाँ हमने 3 साल पढ़ाई की। एंड देन उसके बाद जब मैं 13 ईयर्स का था, देन आई वेंट टू डिफरेंट टाउन एंड देट वॉज गोइंग अवे फ्रॉम माई होम। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट वन, जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू मेरे दिमाग में जैसे वीडियो तरीके से रील चलने लगती है ना, कि मेरी मदर एक तरफ रो रही थी, फादर ऐसे हाथ बांधे खड़े हुए थे, एंड मुझे लगता था हमको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो मैं अपने ब्रदर के पास गया पढ़ने के लिए ना। तो वहाँ पर हमने 9th एंड 10th किया।
0: अच्छा।
1: और फिर हरदोई जो सिटी था वहाँ पे 11th 12th के लिए आ गए। एंड 11 12th वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, तो खाना भी बनाना अपने आप और बहुत सारी जैसे आप यंग एज में जो इश्यूज होते थे वो हुए, लेकिन हर हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मेरे फादर और मदर एजुकेशन के लिए इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो वट वर द ऑब्स्टेकल कम्स आई शुड बी कंसिस्टेंट इन द स्टडीज, तो इस तरीके से पढ़ाई हमारी चलती रही।
0: अमेजिंग अमेजिंग। और आप बुक में लिखते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ, यू नो डिटेल्ड बुक है, तो बहुत मज़ा आया पढ़ने में। मज़ा मतलब इट लाइक यू सेड यू गेट अ वीडियो इन योर हेड, तो हमें भी ऐसा लगा कि वो दृश्य आते हैं हमारे सामने के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, फिर इतना दूर चल के जा रहे हैं। यू हैव डिस्क्राइब दैट ऑल्सो कि कैसे कभी चप्पल पहन के कभी ना पहन के ऐसे चल के जाते थे। फिर यूनिवर्सिटी हरदोई में नहीं होगी, फिर से बदलाव, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं इन देयर ट्वेंटीज, आप तो आपके टीन्स में ही शुरू किया होगा दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ के कहीं जा रहे हैं घर से दूर और यू नो खाना पकाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो दैट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट।
1: इंडीड इट वॉज रियली डिफिकल्ट, एंड वो चीज़ जो इमोशनल चीज़ थी उस सिरा में हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे, स्पेशली मैं तो नहीं कर पाता था कि हमें क्या इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली जब यूनिवर्सिटी में गया लखनऊ में, लखनऊ आज स्टेट कैपिटल बड़ा शहर था, काफ़ी दूर यूनिवर्सिटी के लिए जाना पड़ता था और लोगों ने पहले से डरा के रखा था कि हॉस्टल में मत रहना, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है, कई लोगों ने हमारे यहाँ से कह रखा था। बट इवेंचुअली जब मैं मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था बाहर, तो हमने डिसाइड किया कि आई विल गो एंड लिव इन द हॉस्टल ना, एंड वट एवर द प्रॉब्लम्स कम्स आई विल फेस देम, एंड आई रियली इन्जॉयड माई लाइफ इन द हॉस्टल। फाइनेंसिस की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती थी एंड बट उसके हमने जो क्या कहते हैं इनोवेटिव तरीके, साइंटिफिक माइंड था कि उस तरीके से बहुत सारे तरीके हमने लिखे हैं कैसे कैसे अपने खर्चे कम करते थे और कैसे एक महीने का खर्चा चलाते थे उसमें। एंड उस समय की जैसे एक इमोशनल, काफ़ी इमोशनल बात है जब आपने इसको कहा तो मैं बताता हूँ स्टोरी सी छोटी सी कि जब मैं MSc में पहुँच गया था तभी पैसे की शॉर्टेज हो जाती थी, तो मैंने एक बार अपनी मदर से कहा, मदर अब ये 100 रुपये में काम चलता नहीं है ना। तो अब उनके पास गांव में और वर्किंग लेडी तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, खाना बना रही थी और उन्होंने अपने हाथ झाड़े और ऐसे पोछे और अपने जो एंकलेट्स पहने थी वो निकाल के दे दिए ना, एंड दैट वाज रियली इमोशनल, आई स्टिल रिमेंबर दैट वन। एंड फिर मैंने उनको लाया और बेच करके रखा, कैश रखा अपने पास, जब कभी थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी कि अब 10 रुपये चाहिए ही चाहिए तब फिर उनको यूज़ करता था। लेकिन अब मैं अपनी मदर को कहा कि अब उनको मैं अम्मा बोलता हूँ, जितना सोना पहनना हो जितना करना हो पहन लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट शी स्टेज वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, सेम टाइम फादर का दूसरा रोल था मदर का दूसरा रोल था ना।
0: करेक्ट, हाँ, दोनों हमें सपोर्ट करते हैं ना। तो इसी बात में चलिए एक गाना सुनते हैं और बातें फिर बाद में जारी रखेंगे।

0: वेलकम बैक। तो प्रेम जी, ये बताइए कि आपने बुक अच्छा लिखा है, पर क्यों लिखा? हम लोग सब आते हैं यहाँ पे थोड़े बुक लिखने के इरादा लेके आते हैं, आपके तो एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स कुछ और ही रहे होंगे, एंड फाइनली यू बिकम एन ऑथर। तो आपकी प्रेरणा क्या थी?
1: विनय जी, प्रेरणा मेरे बच्चों से आई इसकी। अगर आपके भी बच्चों ने ज़रूर पूछा होगा कि मम डैड आप अपने पहले की स्टोरी बताओ, जब आपका 50th या जो थोड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट बर्थडेज होते हैं, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट देयर स्पीच दे आस्क यू कैन यू टेल मी स्टोरीज अ प्रीवियस लाइफ, यू नो अ प्रीवियस अर्ली लाइफ। तो उन स्टोरीज को हम बताते थे, तो उन्होंने कहा कि डैड आपकी स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, व्हाई डोंट यू राइट ए बुक। सो दैट वॉज द जेनेसिस टू स्टार्ट टू राइट ए बुक। एंड फिर हमने सोचा, इसमें दो मैसेज मिलते हैं ना, कि हमको हमेशा हम स्टोरीज सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, डिजिटल मीडियाज देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाई शुड बी लिसनर ऑलवेज अबाउट द स्टोरीज, वी शुड टेल आवर ओन स्टोरीज सो दैट पीपल कैन लिसन एंड दे कैन टेक सम मैसेजेस फ्रॉम देयर। सो दैट वॉज द होल रीजन टू राइट द बुक।
0: अच्छा अच्छा। और अभी आपने लिखा है, तो एक संदेश भी दीजिए कि कैसे लिखते हैं, कैसे आपको वो, यू नो, हाउ डिड यू स्टार्ट राइटिंग, व्हाट डिड यू डू?
1: सो इन, तो मैंने उसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया कि यू नीड टू मेक डॉट पॉइंट्स, कि जैसे आपके जितने इयर्स हुए हैं, आपके 50 इयर्स हुए, 60 इयर्स हुए, 60 इयर्स में जब से आपको याद है, अगर लाइफ स्टोरी पूरी लिखनी है, तो मैंने तो हर ईयर वाइज ईयर लिख के उसमें किस किस ईयर की क्या क्या स्टोरीज हमें लिखनी है, पहले मैंने एक उसका रेखा चित्र ऐसा बनाया ना, और फिर उन स्टोरीज की कोड की डेट्स को कन्फर्म किया अपने अपने पेरेंट्स से, अपनी सिस्टर्स से, और अपनी वाइफ से, बच्चों से, कि भाई डेट सही है कि नहीं है, कभी कभी मिक्सअप हो जाता है इधर उधर, तो वो चीज़ हमने उसमें काफ़ी टाइम लगा ना। एंड फिर हमने उसकी स्टाइल, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई दी, थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड होने की वजह से मैंने कहा कि यार नॉर्मल जो स्टोरी ऑटोबायोग्राफी अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक चैप्टर हुआ 20 पेजेस का, हुआ पूरा नो हेडिंग नथिंग, एंड मुझे लगा वो बोरिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। एंड हाँ। तो मैंने उसको इनिशियली, मैंने एक तो हेडिंग्स डाली उस स्टोरीज में ना। अच्छा। अगर आप कंटेंट्स देखें तो आप कंटेंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी स्टोरी पढ़ें। स्टैंड अलोन स्टोरीज हैं, तो आप पढ़ करके फिर दूसरी स्टोरी पर चले जाओ, कोई यू आर नॉट लूजिंग, अगर कल पढ़ लो थोड़ी, आज पढ़ लो, इस तरीके से। तो फिर सेकेंड पार्ट हमने जो लिखा, थीमेटिक लिखा ना, थीम्स पे लिखा हुआ है ना, सो दैट गिव्स ए लिटरेरी कंसेप्ट टू द, एंड दिस वॉट पीपल माई ग्रुप लाइक बंस आई राइटर ग्रुप वेयर आई गो फॉर राइटिंग स्टोरीज, उन लोगों ने कहा दिस हैज बिकम रियली लिटरेरी दैट वे, दिस इज समथिंग यूनिक यू हैव डन, विच I did knowingly, not to make it literary, but as a scientific mind, कि मैं थोड़ा सा something different करना चाहिए, so that was the reason.
0: Yeah. तो अच्छा अच्छा, तो आपने काफी, जैसे आपने बोला scientific mind, उसको भी utilize किया कि dot points बनाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो, उसको themes में करो, तो काफी आपने prepare किया।
1: काफी प्रिपेयर किया
0: और फिर उसको लिखने लगे कि उसको फ्लैश आउट करे, लंबा करे, कैसे उसको वो करे।
1: तो लिखने में मैं एक कंसेप्ट देता हूँ, मैंने किसी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने किसी का ब्लॉग पढ़ा था, कोई लेडी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप छोटी छोटी स्टोरीज के हेडिंग्स बना लो ना पहले से, और उन हेडिंग पे जब स्टोरी लिखने बैठो तो यू शुडंट टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो लेकिन मैं जब बैठता था तो मुझे एक घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था, फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड जो है बढ़ती गई ना। अब जैसे छोटी स्टोरी है अगर एक पेज की, मैं लिख सकता हूँ जल्दी, पहले लैपटॉप में लिखने की स्पीड भी कम थी और

0: और पहले हाथ से भी लिखता था,
1: अच्छा।
0: तो उन सब चीजों से अब अच्छा हो गया है। लेकिन यस, यू शुड क्राफ्ट योर स्टोरी विद इन हाफ एन आवर। अगर इसे ज्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हो।
1: ओके ओके।
0: और फिर धीरे धीरे उनको कलेक्ट करते जाओ और लास्ट में कंपाइल कर दो उनको।
1: तो बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं आपने। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं तो जरूर बैठिए, आपके लाइफ के भी छोटे छोटे वो हेडिंग्स बनाइए, डॉट पॉइंट्स बनाइए, और आपका बुक भी शायद लिखना शुरू करेंगे। और इसके बारे में भी प्रेम जी आपके कुछ आइडियाज होंगे, आपके थॉट्स होंगे।
0: एक मैं और चीज में ऐड करना चाहता हूँ ना, कि जब हम लिखने स्टोरी बैठते हैं तो कई बार आप सोचते हो कि मेरी स्टोरी पढ़ेगा कौन। तो ये मेरा मैसेज है जितने श्रोता लोग हमारे सुन रहे हैं, कि पढ़ने वाले तो अलग हैं, आप तो खाली लिखने वाले हैं। आप छोड़ दीजिए पढ़ने वालों के ऊपर, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मेरी बुक बेस्ट सेलर हो गई। तो सेम चीज आप लोग भी सोचिए, लेकिन प्लीज लिखना शुरू कीजिए।
1: एक्सलेंट। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं और फिर और बातें बाद में करेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 103.1 FM पर हमारा भारतीय प्रसारण जो हर बुधवार को और एतवार को प्रसारित होता है। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम द्विवेदी के साथ, जिन्होंने एक किताब लिखा है अंग्रेज़ी में, द अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट। तो बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम जी के जीवन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। प्रेम जी, आपको याद होगा हम बहुत साल पहले मिले हैं एडलेड में, मेरे ख्याल से रसिक रंजनी करके एक संस्था थी जहाँ पे गीत, गज़ल, यू नो, डांस, म्यूजिक सब ऑर्गेनाइज होते थे, शायद उसमें मिले थे।
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही मेमोरी है और मुझे भी याद है पूरी तरीके से। मुझे तो जब से मैंने बुक लिख रहा हूँ मेरे दिमाग में वो चीज़ें वीडियो की तरीके से चलने लगती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर आयशा हॉल था एंड आप नारायणा राव एंड शशि जैन स्पीकर थी, उस एमसी थी वहाँ पे ना, एंड एंड एंड एंड आई रियली टुक मीन यू कैन से इट आई टुक लेसन फ्रॉम नारायणा एंड कि जिस तरीके से वो इन्वॉल्व होते थे मल्टी कल्चरल उसमें ना, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए। तो रसिक रंजनी में तो मैं कल्चरल एडवाइजर था, फिर मैं धीरे धीरे जब वो आयशा के प्रेसिडेंट बने तो मैं आयशा में भी इन्वॉल्व हुआ, उसका लाइफ मेंबर बना, फिर अपने अमरजीत ग्रेवाल जी आए उसके बाद में, तो थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्वमेंट उधर होता रहा ना, इंडियन उसमें ना,
0: इंडियन एसोसिएशन में,
1: इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन में। फिर कोविड के समय क्या हुआ कि कोविड के समय जब इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें कुछ लाइक माइंडेड पीपल ने एक सनातन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया ना। अच्छा। जिसमें हमने स्टूडेंट्स को फूड पैकेजेस वगैरह भी दिलवाए थे, मैंने लोगों ने डोनेशंस भी किया था एंड मैं उसका अभी करेंटली वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा। प्रेसिडेंट स्नेहल ठाकर जी हैं उसके। एंड उसके साथ साथ कोविड के समय एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। बर्नसाइड काउंसिल में मैं रह रहा हूँ मैगिल में, और वहाँ पे एक उन्होंने कंपेन शुरू की कि नो योर नेबर्स, यू कैन टॉक टू देम, एंड मैंने उनके साथ कुछ नेबर्स के साथ कनेक्शन किया विद द सेफ डिस्टेंसिंग एंड ऑल दोस थिंग। तो उन लोगों को बहुत हमारी स्टोरी पसंद आई, तो उन्होंने अपने बर्नसाइड क्या कहते हैं उनका जो फोकस न्यूज़ निकलता है उसमें भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया था। एंड देन अभी मैं उनके एक प्रोग्राम होता है चैट विद ए लोकल प्रोग्राम, जिसमें आप यंग न्यू माइग्रेंट से मिलते हो और उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हो, इंग्लिश बोलते हो थोड़ा सा, और कुछ कनेक्शंस उनके डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ मल्टी कल्चरल में।
0: तो अच्छा, नॉट जस्ट इंडियन कम्युनिटी नहीं, आप पूरे
1: वाइडर कम्युनिटी में कर रहा
0: हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के, वेरी गुड, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है।
1: एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी हमको ये डॉन डनस्टन जी का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें मुझे स्पीच के लिए भी इनवाइट किया है।
0: अच्छा अच्छा, एक्सीलेंट। तो आपको ये लगता है कि ये बुक लिखने के बाद आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं या यू नो रिकॉग्निशन मिल रहा है आउटसाइड कम्युनिटी में?
1: बुक लिखने के बाद रियल में मिल रहा है। आई टेल यू कि साइंस में तो टॉक्स देते थे और कोई जिस तरीके की बैक बिहाइंड द सीन्स ही सब काम करना पड़ता है जे साइंटिस्ट, यू नो, बट तीन महीने से काफ़ी हमको इसमें रिकग्निशन मिल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जब से अमेजोन में रिकग्निशन मिली, लोगों ने इतना प्यार दिया और उसको पढ़ना शुरू किया, बेस्ट सेलर बनाया, तो उसके बाद फिर एक सेनेटर हैं यहाँ पे एंड्रू मैकलॉकलन, उन्होंने हमारी बुक को लॉन्च किया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सेनेट में उसको पढ़ दिया जाके ना, एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर दैट्स द टाइम इट ट्रिगर्ड, यू नो, एंड देन एबीसी रेडियो में जो लिबर्टी ने किया एंड इट गॉट रिव्यूड इन अमेरिका एज वेल, दिस फुल रिव्यू किया है, एक इंडियन पैनोरमा है वहाँ पे। फिर मुझे एक अमेरिका का 250th ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें एक बुक छपी है करीब 300 पेजेस की, उसमें भी मेरा मैसेज उन्होंने पब्लिश किया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट वन। फिर एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की एक कार्लेटा मैरी हैं, यूरोप में सेटल्ड हैं, और उनका बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और कहा कि प्रेम हम आपकी स्टोरी पब्लिश करना चाहते हैं, तो अभी पब्लिश हुई है उसमें भी ना कि एंड हाउ द विलेज बॉय गॉट इनटू साइंटिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स एंड इस तरीके से अभी इंडिया में लोगों को इसका जब से पता चला, आजकल फेसबुक को इससे सब पता चलता है फ्रेंड्स को, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब जानते हो इंडियन फ्रेंड्स किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं कि इसको हिंदी में लिखो ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश जिसमें कई बार लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, या इवन मेरे परिवार में भी सभी लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं या इंजॉय नहीं करेंगे उतना पढ़ना, तो मैं अभी बहुत बिजी हो रहा हूँ हिंदी ट्रांसलेट करने में ना, और नवम्बर में जब इंडिया जाऊँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको लॉन्च करूँगा वहाँ पे।
0: एक्सेलेंट, तो हमारे हिंदी श्रोता भी उसे जो जैसे आपने बोला जब हमारे मातृभाषा में पढ़ते हैं तो उसका एक मज़ा और ही है, अंग्रेजी तो जानते होंगे लेकिन फिर भी हिंदी में अगर छपा तो ज़रूर बताइएगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी आई होप इट विल बी अवेलेबल। तो आपने अपने मल्टीकल्चरल कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया, अभी आप क्या कहेंगे कि हमारे भारतीय समुदाय ने में हमने मैंने अभी अभी श्रोताओं से कहा कि चलो आप भी डॉट पॉइंट्स कीजिए, आपका बुक लिखना, अगर आपको पूरा बुक की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिश करें उसको, लेकिन इवन इफ़ यू जस्ट हैव अ जर्नल अपने लिए और आपके बच्चों के लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना।
1: तो इसके लिए रियली मैं कहूँगा आजकल पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर उनको पहले से ही हम कह दें कि बड़ी बुक लिखो तो कोई नहीं शुरू करेगा ना, दैट्स व्हाई आई सेड स्टार्ट डॉट पॉइंट्स। और मैं श्रोताओं के कहना चाहूँगा कि जिनको मैं जानता हूँ जिनको नहीं जानता हूँ, एवरीवन सिट्स ऑन द डिनर एंड टेल देयर स्टोरी, जब आप सोशलाइजेशन करते हो तो हर कोई स्टोरी बताता है, उसी स्टोरी को थोड़ा सा लिख लेना है और धीरे धीरे उनको कलेक्ट करते रहना है ना कि एक स्टोरी हो गई, दो स्टोरी हो गई, एंड आजकल पब्लिश करना इतना हार्ड नहीं है, यू डोंट नीड टू पब्लिश, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू पब्लिश, बट यू नीड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट सो दैट दैट कैन बी केप्ट फॉर जनरेशंस, यू नो। तो उस चीज़ को करना पड़ेगा, बट आई एम देयर टू हेल्प, अगर कोई आएगा तो आई विल कंसल्ट देम विदाउट एनी फीस एंड ऑल दोस थिंग्स, आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को, अगर कोई जैसे आपने नीलम जी को कहा था और शी विल कनेक्ट मी, एंड इस तरीके से अगर कोई भी हमारा स्कूल का हिंदी स्कूल चल रहा है या वो लोग हमसे अगर कनेक्ट करते हैं तो आई विल कम एंड गिव देम टेल द किड्स हाउ टू डू इट, एंड इवन टू द ओल्डर एज वेल, द सीनियर सिटीजन्स जो हैं दे कैन स्पेंड सम ऑफ देयर टाइम टू कीप मेक सम स्टोरी सो दैट देयर चिल्ड्रंस कैन रीड, यू नो।
0: तो ये बात आपने बहुत ही अच्छा कहा कि आप बच्चों को भी बताएंगे कि कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे वो, और पहले आपने कहा कि इवन इफ़ यू राइट जस्ट फॉर हाफ एन आवर, एक छोटी सी कहानी हाफ एन आवर, तो इज दैट द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वुड हेल्प चिल्ड्रन एज वेल। अच्छा, तो वो भी आप बच्चों को भी बताएंगे कि टिप्स देंगे कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है प्रेम जी, आपका ये प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए उसके बारे में थोड़ा ऑफलाइन भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: ठीक।

0: तो प्रेम जी, हमने आपके बुक के बारे में थोड़ा शुरू किया, फिर थोड़ा डाइवर्ट हो गए मेरे ख्याल से, कम्युनिटी के बारे में बात किया। तो ये मुझे ये पढ़ के बहुत इंटरेस्ट लगा बुक में कि आप कैसे आए ऑस्ट्रेलिया, जस्ट योर जर्नी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आए।
1: तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो पीएचडी में मुझे थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। उसी समय एक साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडलाइड यूनिवर्सिटी में एक किट निकाली उन्होंने ना, एंड मैंने उस किट को ऑब्टेन किया और मुझे, मैंने उस अपने एम को पूरा किया पीएचडी में, एंड उसके बाद मुझे यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला ना।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद हमने इन लोगों से कनेक्ट किया, एंड सो आई केम टू एडलाइड। लेकिन दैट वाज लिटिल बिट बाय बाइफर्केशन द रूट, आई फर्स्ट वेंट टू न्यूजीलैंड एंड देन केम टू ब्रिस्बेन एंड देन केम टू एडलाइड, एंड आई वर्कड विद द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर आई रिसीव दैट किट फॉर माई रिसर्च, एंड वहाँ पे जो है फर्स्ट जॉब मेरा जो प्रोफेसर ब्रायन मे के साथ में था, एंड आई वॉन्टेड टू पब्लिश रियली गुड पब्लिकेशंस विद हिम, दैट्स द एम व्हेन यू डू पीएचडी, यू वांट पब्लिकेशन, एंड वी कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टूवर्ड्स द बोन रिसर्च एंड देन इवेंचुअली प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च, एंड बच्चों के रिसर्च में क्रेनियोसिनोस्टोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसके लिए हमने काम किया, ग्रोथ प्लेट इंजरी के लिए काम किया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई मेड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सुपरवाइज पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑनर्स स्टूडेंट, एंड दैट इज ऑल्सो वॉज वन ऑफ देम, एंड अपार्ट फ्राम दैट रूटीन चीजें डूइंग, गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग, यू नो। सो आई थिंक 30 ईयर्स इन एडलाइड में बहुत अच्छी तरीके से गए, एंड इवेंचुअली आया तो मैं साइंस के लिए था एडलाइड, लेकिन मुझे होम मिल गया और होम ने मुझे जो है ऑथर बना दिया यहाँ पे ना।
0: और होम में और भी लोग होंगे?
1: बिल्कुल, हमारी वाइफ हैं आरती द्विवेदी, एंड उन्होंने हमारा हर हमेशा साथ दिया हर चीज़ में, और इवन बुक में भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, और बच्चों के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो आकृति एंड प्रखर, आकृति इज़ मैरिड नाउ एंड शी इज़ इन लंदन एंड प्रखर इज़ इन मेलबर्न।
0: अच्छा,
1: सो इस तरीके से।
0: तो आपने हमारी बातें शुरू करते वक्त कहा कि एजुकेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट आपके पिता के लिए, तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, आप तो रिसर्च साइंटिस्ट थे, बच्चे भी अच्छा पढ़ा लिखाया होगा आपने। तो आपके जर्नी जो थी, जो आपके वो छोटी सी गांव से, एज यू कॉल इट द अनलाइकली माइग्रेशन फ्रॉम वहां से एडलेड तक, एडलेड में आपको कैसा लगा, जैसे एज ए न्यू माइग्रेंट आपको वो टाइम में कैसा लगा आपको?
1: देखिए, शुरू में जब आप आते हो तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं ना।
0: तो बच्चे बच्चों को लेके आए थे?
1: No,
0: या बच्चे यहाँ?
1: माई डॉटर वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड एंड माई सन वॉज बॉर्न इन ब्रिस्बेन।
0: ओके,
1: तो फिर हम एडलाइड में उसके बाद माइग्रेट हुए 4 साल के बाद ना। तो बट आई एम इन एडलाइड फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स एंड ए लॉट ऑफ लर्निंग। मैं अपने को आज की भी डेट में लर्न करने के लिए अपने को पीछे नहीं हटता हूँ ना, किसी से भी लर्न करना हो, बच्चे से लर्न करना हो, छोटे से लर्न करना हो, बड़े से लर्न करना हो, और उसकी वजह से जैसे जैसे बुक है, बुक में मैंने बहुत सारी लर्न किया है, जो मैंने कोर्सेस वगैरह तो किए, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो बनसाई राइटर ग्रुप में जाता हूँ उसमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट पार्ट्स लर्न किए ना, एंड दैट्स व्हाई मेरा जो, जैसे अगर आप न्यू माइग्रेंट्स के लिए जो नए माइग्रेंट्स आते हैं, तो वट एवर क्वालिफिकेशंस यू हैव डन इन इंडिया, बट यू नीड टू लर्न कल्चर एंड थिंग्स ऑफ हियर एज वेल। एंड मैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आप भी लाइक करेंगी, कि एवरी ऑस्ट्रेलियन एंड एवरी इंडियन नाउ नोज ब्रिंग ए प्लेट।
0: हाँ जी, ब्रिंग ए प्लेट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी।
1: अब मैं ब्रिंग ए प्लेट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, और जब मैं पहली बार आया था मुझसे किसी ने कहा कि ब्रिंग ए प्लेट, फॉर ए ओकेजन था उसके लिए ब्रिंग ए प्लेट, तो मैंने अपनी वाइफ को तुरंत रिंग किया ना, हमने कहा कैन यू बाय ए न्यू प्लेट फॉर मी, यू नो, एंड दैट्स द वे आई गॉट कन्फ्यूज. बट लेटर आई रियलाइज दैट एवरी माइग्रेंट कम्स विद ए प्लेट, विद ए इनविजिबल प्लेट, जिसमें उसकी चीज़ें होती हैं, उसका उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसका लर्निंग होती है, उसका विश्वास होता है, उसको ड्रीम्स होते हैं. और उस इनविजिबल प्लेट के को लेकर के आप जब आते हो यहाँ पे, और तब उसको दूसरे माइग्रेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए और उनसे लर्न सीखना चाहिए और अपनी चीज़ें भी उनको सिखानी चाहिए. इट्स नॉट ओनली ईटिंग, दैट्स द वे आई एक्सप्लेन मल्टीकल्चरल.
0: बहुत सुंदर एनालॉजी है, बहुत सुंदर कहा आपने प्रेम जी, कि अपने प्लेट लेके आते हैं हम और उसको शेयर करते हैं,
1: शेयर करते हैं ना, और दूसरों की प्लेट भी टेस्ट करते हैं. तो दैट्स द वे यू इंटीग्रेट इनटू द मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एंड दैट्स द कांसेप्ट आई हैव फॉलोड इन माय लाइफ.
0: परफेक्ट.
1: ऑल्दो आई डिडंट नो व्हाट इज एंड व्हाट वाज ब्रिंग ए प्लेट, एंड माय वाइफ एक्सप्लेन्ड इट.
0: हां,
1: शी वाज मोर स्मार्टर देन मी, ऑल्दो आई वाज अ साइंटिस्ट इन द फैमिली, बट शी वाज मोर स्मार्ट.
0: ब्यूटिफुल. तो आपने बुक के आखिर में, मुझे लगता है इसी बात पे मैं ये भी बताऊं कि दिस वाज नॉट जस्ट एनालॉजी, इट इज़ क्वाइट अ डीप कॉन्सेप्ट. और आपके बुक में भी आप आखिर में थोड़ा स्पिरिचुअल जाते हैं, थोड़ा डीपर जाते हैं, और भगवद गीता को कोट किया है. तो आई वुड लाइक टू रीड अ लिटिल बिट आउट ऑफ दिस दैट यू से दीज स्टोरीज लाइक फ्रॉम Krishna's teachings of the Bhagavad Gita or from Ramayana Mahabharat. These stories shaped the way I understood the world from an early age. Long before I crossed oceans or rebuilt my professional identity in Australia, they taught me how to adapt, observe, and keep moving forward. They still remind me that if calm can exist in the middle of a great battlefield of Mahabharata, then we too can face our quieter battles, missed flights, failed experiments, whatever multicultural misunderstandings, without losing perspective. So, and you have said, life will never be completely certain. Accept uncertainty. Work honestly and learn from every challenge life brings. Step into the unknown with gratitude and with hope.
1: And जो आपने पढ़ा है उसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा, उसी का कंक्लूज़न है कि हम जो माइग्रेंट्स हैं गीता को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं अननोइंगली, क्योंकि हमको तो अनसर्टेन, इंडिया में रहते हैं तब तो कई चीज़ें सर्टेन होती हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा नौकरी है, परमानेंट नौकरी. यहाँ पर जब आप आते हो तो एवरीथिंग इज अनसर्टेन, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ रहोगे, कहाँ नौकरी लगेगी, क्या होगा, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो एंड अनसर्टेनिटी, यही कृष्णा ने कहा है गीता में, अनसर्टेनिटी. एंड एज ए माइग्रेंट वी आर ऑलवेज अनसर्टेन, एंड एज ए साइंटिस्ट आई एम ऑलवेज अनसर्टेन, बिकॉज व्हेन यू गेट द न्यू डाटा यू डोंट नो व्हाट दैट मींस, सो आई लिसन टू एवरीवन. सो यू इफ यू कंबाइन विद अनसर्टेनिटी विद ब्रिंग ए प्लेट, टेक योर प्लेट विद अनसर्टेनिटी एंड यूज other place information as well, and that is your becomes multicultural, you know.
0: Gee. And you must and use, that's a very fundamental thing,
1: fundamental thing,
0: to
1: yeah.
0: start your life with. So प्रेम जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपका बुक द अनलाइकली माइग्रेंट पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा. मैं आई एम श्योर हमारे श्रोताओं को हमारी बातचीत सुन के भी अभी क्यूरियोसिटी जगी होगी बुक पढ़ने के लिए. तो ये बुक आपने कहा कि अमेजोन में आपको मिलेगा?
1: यस, यहाँ पे अमेजोन में अवेलेबल है. अगर इंडिया में ख़रीदनी है किसी को तो वहाँ पे दो तीन प्लेटफॉर्म पे है, अमेजोन में है एंड फ्लिपकार्ट पे है एंड पोथी पे है बेंगलोर में.
0: एक्सलेंट, एक्सलेंट. और इतने अच्छे आपने एडवाइस भी दिया है, इतने न्यू माइग्रेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए. और जैसे आपने कहा हर एक का प्लेट अलग होता है, और अगर और भी श्रोता हमारे लिखने लगेंगे तो हमारी कहानियाँ, भारतीय माइग्रेंट्स की कहानियाँ हमारे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में और भी स्प्रेड होगा.
1: एग्जैक्टली.
0: तो थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू इन दिस.
1: थैंक यू वेरी मच विनय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प योर पीपल एंड अवर पीपल. थैंक यू.
2: आप सुन रहे हैं एडलेड के मल्टीकल्चरल रेडियो स्टेशन 5 ABI पर हिंदी कार्यक्रम. इसमें आप सुन रहे थे साइंटिस्ट व लेखक डॉक्टर प्रेम द्विवेदी के साथ एक बातचीत. और इस विशेष मुलाकात के बीच कुछ गीत भी लगाया हमने. ये सारे गाने एक्टर नाना पाटेकर पर फिल्माए गए थे या उनके फिल्म से लिए गए थे. आशा है कि आपको पसंद आया होगा.

कार्यक्रम को अंत करने से पहले एक और अनाउंसमेंट है। जल्द ही हमारे इस रेडियो स्टेशन का रेडियोथॉन होने वाला है। रेडियोथॉन के दिन हम आपसे डोनेशन की अनुरोध करेंगे, तो प्लीज हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, बातों और गीतों के आनंद लेते रहिए और साथ ही पर्स खोलकर हमारी सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है, तो मुझे विनिया राय को इजाजत दीजिए। नमस्कार।